अत्यन्त जरुरी फोन नम्बरहरु सुन्दर हरिच दमकल फोन नम्बर 021-546-666 मोबाइल 9840-82-972 प्रहरी चौकी बिराक चौक 9852-33908 इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारी।

साथीवाला फूड प्रोडक्ट का उत्पादन भुजिया दाल मोट मटर फ्राई चिप्स को सफलता पछि चादनी भुजिया ले मीठो स्वाद में पालक पनीर को पनि उत्पादन शुरू करी बजार में ल्याई सकेको छ। तपाई हाम्रो शहर में उत्पादन भएको पालक पनीर खाऊ सधैं रमाऊ। साथीवाला फूड प्रोडक्ट सुंदर रहेछ 9 बुधवार मोरङ प्रोप्राइटर रमन कार्की।

गुणस्तरीय सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता। सुकुना सामुदायिक हस्पिटल प्राली सुन्दर हरेचा दश मोरन। अब सुकुना सामुदायिक हस्पिटल प्रालीमा कोशी अस्पतालमा कार्यरत अनुभवी स्त्री रोग तथा प्रसूति विशेषज्ञ डाक्टर विवेचना सिग्देलद्वारा सम्पूर्ण स्त्री रोगको जाँच तथा उपचार सेवा प्रत्येक दिन बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म। हाम्रा सेवाहरू: डाक्टर नारायण बस्नेत, एमबीबीएस एमएस, वरिष्ठ सर्जन, पेट रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक शनिबार। डाक्टर रमेश बस्नेत, एमबीबीएस एमएस, वरिष्ठ हार्ट जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक शनिबार। डाक्टर हिरालाल सहनी, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ बाल तथा नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक शनिबार। डाक्टर मनोज गोलाखे, मुटु रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक शनिबार। डाक्टर नीता मण्डल, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्री

सम्पर्क अस्पताल डाइरेक्टर प्रमोद कोइराला, सुकुना सामुदायिक हस्पिटल प्राली, सुन्दर हरिचा 10 ग्राड चोक मोरन, मोबाइल नम्बर 98520 48 247, फोन नम्बर 0215487।

जरूरी फोन नंबर हरू सुंदर हरी चे डम कॉल फोन नंबर 0125446666 मोबाइल 9840829972 प्रहरी चौकी बिराट चौक 9852033908 इलाका प्रहरी कार्यालय बेलवारी 9852901637 सुकुना हॉस्पिटल बिराट चौक 0125446786 एम्बुलेंस 9852054886 रेडियो सुशीली द्वारा जनहित में जारी।

गुणस्तरीय सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता। सुकुना सामुदायिक हस्पिटल प्राली सुन्दर हरेचा दश मोरन। अब सुकुना सामुदायिक हस्पिटल प्रालीमा कोशी अस्पतालमा कार्यरत अनुभवी स्त्री रोग तथा प्रसूति विशेषज्ञ डाक्टर विवेचना सिग्देलद्वारा सम्पूर्ण स्त्री रोगको जाँच तथा उपचार सेवा प्रत्येक दिन बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म। हाम्रा सेवाहरू: डाक्टर नारायण बस्नेत, एमबीबीएस एमएस, वरिष्ठ सर्जन, पेट रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक शनिबार। डाक्टर रमेश बस्नेत, एमबीबीएस एमएस, वरिष्ठ हार्ट जोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक शनिबार। डाक्टर हिरालाल सहनी, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ बाल तथा नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक शनिबार। डाक्टर मनोज गोलाखे, मुटु रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक शनिबार। डाक्टर नीता मण्डल, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक शनिबार। डाक्टर राकेश मण्डल, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ फिजिसियन इन्डोक्राइनोलोजिस्ट, ब्लड प्रेसर, सुगर तथा थाइराइड रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक शनिबार। डाक्टर इक्वाल अहमद, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ यूरोसर्जन तथा मूत्र रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक शनिबार। डाक्टर वरुण देव, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ सर्जन, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक शनिबार। डाक्टर नीरज खड्का, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक शनिबार। वरिष्ठ ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डाक्टर सञ्जु घिमिरे, प्रत्येक दिन। वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुभेश कुमार शाह, प्रत्येक दिन। डाक्टर शिवराज शर्मा, एमबीबीएस एमएस, क्यान्सर सर्जन, प्रत्येक शनिबार। डाक्टर सरोज अधिकारी, एमबीबीएस एमडी, मनोचिकित्सा, प्रत्येक महिनाको तेस्रो शुक्रबार। डाक्टर अनिश अधिकारी, एमबीबीएस, 24 घण्टा। डाक्टर शिशुपाल मण्डल, एमबीबीएस, 24 घण्टा। डाक्टर विकी शाह, एमबीबीएस, 24 घण्टा। डाक्टर अमोघ उपाध्याय, एमबीबीएस, 24 घण्टा। डाक्टर चन्दन शाह, रेडियोलोजिस्ट, प्रत्येक हप्ताको मंगलबार, बिहिबार र शनिबार दिउँसो 3:30 बजे। डाक्टर प्रदीप पाण्डे, सोनोलोजिस्ट, प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म। डाक्टर सबिन लुइटेल, रेडियोलोजिस्ट, दैनिक दिउँसो 2 बजेदेखि 5 बजेसम्म। सम्पर्क अस्पताल डाइरेक्टर प्रमोद कोइराला, सुकुना सामुदायिक हस्पिटल प्राली, सुन्दर हरिचा 10 ब्राड चोक, मोरन। मोबाइल नम्बर 98520 48 247, फोन नम्बर 021548786।

टिकाउका नयाँ पुराना डिजाइनका सम्पूर्ण गरगहना सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ नि। सम्पर्क माछा पुस्से ज्वेलर्स, विराट चोक मोरेङ, प्रोप्राइटर रोशन ढकाल, राजेन्द्र ढकाल, ताराराज ढकाल। मोबाइल नम्बर 9852557092, 9842959750, 9842235625, 9842525205।

0: स्थानीय परिवेश स्वस्थ मनोरंजन अनि तपाईको आफ्नै आवाज यो हो जनमन के बोली रेडियो सुसेली 106.3 मेगाहर्ज
1: अत्यन्त जरुरी फोन नम्बरहरु सुन्दर हरिच दमकल फोन नम्बर 021-546-666 मोबाइल 98-42-89-72 प्रहरी चौकी विराट चौक 98-520-33-908 इलाका प्रहरी कार्यालय बेलवारी 98-520-90-137 सुकुना हस्पिटल विराट चौक 021-546-786 एम्बुलेन्स 98-520-54-886 रेडियो सुशीलद्वारा जनहितमा जारी

साथीवाला फूड प्रोडक्ट का उत्पादनहरू भुजिया दालमोट मटर फ्राई चिप्स को सफलता पछि चादनी भुजिया ले मीठो स्वाद में पालक पनीर को पनि उत्पादन शुरू करी बजार में ल्याई सकेको छ। तपाई हाम्रो शहर में उत्पादन भएको पालक पनीर खाऊ सधैं रमाऊ। साथीवाला फूड प्रोडक्ट सुन्दर रहेछ नौ बुधबारे मोरङ प्रोप्राइटर रमन कार्की।

गुणस्तरीय सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता। सुकुना सामुदायिक हस्पिटल प्राली सुन्दर हरेचा दश मोरङ। अब सुकुना सामुदायिक हस्पिटल प्रालीमा कोशी अस्पतालमा कार्यरत अनुभवी स्त्री रोग तथा प्रसूति विशेषज्ञ डाक्टर विवेचना सिग्देलद्वारा सम्पूर्ण स्त्री रोगको जाँच तथा उपचार सेवा प्रत्येक दिन बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म। हाम्रा सेवाहरू: डाक्टर नारायण बस्नेत, एमबीबीएस एमएस, वरिष्ठ सर्जन, पेट रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार; डाक्टर रमेश बस्नेत, एमबीबीएस एमएस, वरिष्ठ हार्ट जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार; डाक्टर हिरालाल सहनी, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ बाल तथा नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार; डाक्टर मनोज गोलाखे, मुटु रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार; डाक्टर नीता मण्डल, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार; डाक्टर राकेश मण्डल, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ फिजिसियन इन्डोक्राइनोलोजिस्ट, ब्लड प्रेसर, सुगर तथा थाइराइड रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार; डाक्टर इक्वाल अहमद, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ युरोसर्जन तथा मूत्र रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार; डाक्टर वरुण देव, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ सर्जन, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार; डाक्टर नीरज खड्का, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार; वरिष्ठ ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डाक्टर सञ्जु घिमिरे प्रत्येक दिन; वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुभेश कुमार शाह प्रत्येक दिन; डाक्टर शिवराज शर्मा, एमबीबीएस एमएस, क्यान्सर सर्जन प्रत्येक शनिबार; डाक्टर सरोज अधिकारी, एमबीबीएस एमडी, मनोचिकित्सा प्रत्येक महिनाको तेस्रो शुक्रबार; डाक्टर अनिश अधिकारी, एमबीबीएस 24 घण्टा; डाक्टर शिशुपाल मण्डल, एमबीबीएस 24 घण्टा; डाक्टर विकी शाह, एमबीबीएस 24 घण्टा; डाक्टर अमोघ उपाध्याय, एमबीबीएस 24 घण्टा; डाक्टर चन्दन शाह, रेडियोलोजिस्ट प्रत्येक हप्ताको मंगलबार, बिहिबार र शनिबार दिउँसो 3:30 बजे; डाक्टर प्रदीप पाण्डे, सोनोलोजिस्ट प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म; डाक्टर सबिन लुइटेल, रेडियोलोजिस्ट दैनिक दिउँसो 2 बजेदेखि 5 बजेसम्म। सम्पर्क अस्पताल डाइरेक्टर प्रमोद कोइराला, सुकुना सामुदायिक हस्पिटल प्राली, सुन्दर हरिचा 10 ब्राड चोक मोरङ। मोबाइल नम्बर 98528427, फोन नम्बर 0215487686।

0: स्थानीय परिवेश स्वस्थ मनोरंजन अनि तपाईको आफ्नै आवाज यो हो जनमनकै बोली रेडियो सुसेली 106.3 मेगाहर्ज
1: अत्यन्त जरुरी फोन नम्बरहरु सुन्दर हरिच दमकल फोन नम्बर 021-545-6666 मोबाइल 98-40-82-972 प्रहरी चौकी बिरा चौक 98-520-33-908 इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारी 98-520-90-137 सुकुना हस्पिटल बिरा चौक 021-545-786 एम्बुलेन्स 98-520-54-886 रेडियो सुसेली द्वारा जनहित मा जारी
2: साथीवाला फूड प्रोडक्ट का उत्पादन भुजिया दाल मोट मटर फ्राई चिप्स को सफलता पछि चादनी भुजिया ले मीठो स्वाद में पालक पनीर को पनि उत्पादन शुरू करी बजार में ल्याई सकेको छ तपाई हाम्रो शहर में उत्पादन भएको पालक पनीर खाऊ सधैं रमाऊ साथीवाला फूड प्रोडक्ट सुन्दर रहेछ 9 बुधबारे मोरङ प्रोप्राइटर रमन कार्की

0: तपाई अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ जनमनकै बोली रेडियो सुसेली 106.3 मेगाहर्ज।
1: अत्यन्त जरुरी फोन नम्बरहरु सुन्दर हरिच दमकल फोन नम्बर 021-546-666 मोबाइल 98-40-82-69-72 प्रहरी चौकी बिरा चौक 98-520-33-908 इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारी 98-520-90-137 सुकुना हस्पिटल बिरा चौक 021-546-786 एम्बुलेन्स 98-520-54-886 रेडियो सुशली द्वारा जनहित

विशेषज्ञ प्रत्येक शनिवार डाक्टर नीरज खड्का एमबीबीएस एमडी वरिष्ठ छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिवार वरिष्ठ ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डाक्टर संजु घिमिरे प्रत्येक दिन वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुरेश कुमार शाह प्रत्येक दिन डाक्टर शिवराज शर्मा एमबीबीएस एमएस क्यान्सर सर्जन प्रत्येक शनिवार डाक्टर सरोज अधिकारी एमबीबीएस एमडी मनोचिकित्सा प्रत्येक महिनाको तेस्रो

राजेन्द्र ढकाल ताराराज ढकाल। मोबाइल नम्बर 98527792 98422959 98423523 5225205।

0: स्थानीय परिवेश स्वस्थ मनोरंजन अनि तपाईको आफ्नै आवाज यो हो जनमनकै बोली रेडियो सुसेली 106.3 मेगाहर्ज
1: अत्यन्त जरुरी फोन नम्बरहरु सुन्दर हरिच दमकल फोन नम्बर 021-546-666 मोबाइल 98-40-82-69-72 प्रहरी चौकी बिराट चौक 98-520-33-908 इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारी 98-520-90-137 सुकुना हस्पिटल बिराट चौक 021-546-786 एम्बुलेन्स 98-520-54-886 रेडियो सुसेली द्वारा जनहित में जारी
2: अब तो बिहे बटुलो पूजा पुराण चार हिड़न पर्स भो गहना जस्त आकर्षक सुंदर गहना तो किन्न पर्ने कहाँ किन्नी होला
3: ल ये सजिलो कुरा भर्खर बिराट चोक में खुले माछा पुष्प ज्वेलर्स किन्नी त्यहाँ त संपूर्ण आकर्षक र टिकाऊ का नया पुराना डिजाइन का संपूर्ण गरगहना सुपथ मूल्य में उपलब्ध छ नि संपर्क माछा पुष्य ज्वेलर्स बिराट चोक मोरेन प्रोप्राइटर रोशन ढकाल राजेन्द्र ढकाल ताराराज ढकाल मोबाइल नंबर 98-520-57-792 98-422-59-749 98-420-23-562 98-42-25-25-05
4: हाइलाइट्स नेपाल कम्प्लिट डिजिटल इन्टरटेनमेन्ट हाउस

गुणस्तरीय सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता। सुकुना सामुदायिक हस्पिटल प्राली सुन्दर हरेचा दस मोरन। अब सुकुना सामुदायिक हस्पिटल प्रालीमा

उसै घण्टा डाक्टर चन्दन शाह रेडियोलोजिस्ट प्रत्येक हप्ताको मंगलबार बिहिबार र शनिबार दिउँसो 3:30 बजे डाक्टर प्रदीप पाण्डे सोनोलोजिस्ट प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म डाक्टर सबिन लुइटेल रेडियोलोजिस्ट दैनिक दिउँसो 2 बजेदेखि 5 बजेसम्म सम्पर्क अस्पताल डाइरेक्टर प्रमोद कोइराला सुकुना सामुदायिक हस्पिटल प्राली सुन्दर हरिचा 10 ब्राड चोक मोरन मोबाइल नम्बर 98528427 फोन नम्बर 021548786

0: अपना बेताल महीने फिर दुका पाइए झूसे और फोन नंबर 0121545787 9842545541 अब हो अब गुड वेरी गुड वेरी गुड
1: लुगा लगाऊ गाड़ी चढ़ने ठाव सम्म जाऊ गाड़ी चढ़ अस्पताल पुगेर पुर्जी काट लाइन लाग कहिले नाम बोलाउँछ अनि बल्ल डाक्टर देखाउन पाइन्छ
2: के भयो बोलादै के गुनगुनाइरहेको
1: हैन बुढीलाई डाक्टरकोमा लानु पर्ने कति समय लाग्छ भनेर यसो हिसाब गरेको
2: हेत तेरी अब पनि डाक्टर देखाउन समयको हिसाब गर्नुपर्छ त अब त सिधै हाम्रो पात्रो खोल्नु अनि कुन रोगको विशेषज्ञ डाक्टर देखाउने हो उसलाई अडियो या भिडियो कल गर्नु
1: यति सजिलै
2: अनि त अब हाम्रो पात्रो एपबाट विशेषज्ञ डाक्टरसँग परामर्श लिन एकदम सजिलो छ न पैसा लाग्छ धेरै न समय जान्छ खेरै
3: फूड प्रोडक्ट का उत्पादन भुजिया दालमोट मटर फ्राई चिप्स को सफलता पछि राधनी भुजिया ने मीठो स्वाद में पालक पनीर को पनि उत्पादन शुरू करी बजार में ल्याई सकेको छ तपाई हाम्रो शहर में उत्पादन भएको पालक पनीर खाउ सधैं रमाऊ साथीवाला फूड प्रोडक्ट सुंदर रहेछ 9 बुधवार मोरङ प्रोप्राइटर रमन कार्की
4: गुणस्तरीय सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता सुकुना सामुदायिक हस्पिटल प्राली सुन्दर हरेचा 10 मोरङ अब सुकुना सामुदायिक हस्पिटल प्रालीमा कोशी अस्पतालमा कार्यरत अनुभवी स्त्री रोग तथा प्रसूति विशेषज्ञ डाक्टर विवेचना सिग्देलद्वारा सम्पूर्ण स्त्री रोगको जाँच तथा उपचार सेवा प्रत्येक दिन बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म हाम्रा सेवाहरू डाक्टर नारायण बस्नेत एमबीबीएस एमएस वरिष्ठ सर्जन पेट रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार डाक्टर रमेश बस्नेत एमबीबीएस एमएस वरिष्ठ हार्ट जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार डाक्टर हिरालाल सहनी एमबीबीएस एमडी वरिष्ठ बाल तथा नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार डाक्टर मनोज गोलाखे मुटु रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार डाक्टर नीता मण्डल एमबीबीएस एमडी वरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार डाक्टर राकेश मण्डल एमबीबीएस एमडी वरिष्ठ फिजिसियन इन्डोक्राइनोलोजिस्ट ब्लड प्रेसर सुगर तथा थाइराइड रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार डाक्टर इक्वाल अहमद एमबीबीएस एमडी वरिष्ठ युरोसर्जन तथा मूत्र रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार डाक्टर वरुण देव एमबीबीएस एमडी वरिष्ठ सर्जन नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार डाक्टर नीरज खड्का एमबीबीएस एमडी वरिष्ठ छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार वरिष्ठ ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डाक्टर सन्जु घिमिरे प्रत्येक दिन वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुरेश कुमार शाह प्रत्येक दिन डाक्टर शिवराज शर्मा एमबीबीएस एमएस क्यान्सर सर्जन प्रत्येक शनिबार डाक्टर सरोज अधिकारी एमबीबीएस एमडी मनोचिकित्सा प्रत्येक महिनाको तेस्रो शुक्रबार डाक्टर अनिश अधिकारी एमबीबीएस 24 घण्टा डाक्टर शिशुपाल मण्डल एमबीबीएस 24 घण्टा डाक्टर विकी शाह एमबीबीएस 24 घण्टा डाक्टर अमोघ उपाध्याय एमबीबीएस 24 घण्टा डाक्टर चन्दन शाह रेडियोलोजिस्ट प्रत्येक हप्ताको मंगलबार बिहिबार र शनिबार दिउँसो 3:30 बजे डाक्टर प्रदीप पाण्डे सोनोलोजिस्ट प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म डाक्टर सबिन लुइटेल रेडियोलोजिस्ट दैनिक दिउँसो 2 बजेदेखि 5 बजेसम्म सम्पर्क अस्पताल डाइरेक्टर प्रमोद कोइराला सुकुना सामुदायिक हस्पिटल प्राली सुन्दर हरिचा 10 ब्राड चोक मोरङ मोबाइल नम्बर 98520 48247 फोन नम्बर 0215487686

हामलाई तिमी चाहिने आउन बस दाहिने डर मान्नु पर्दैन आउन

तिमलाई कठै बरी किन खोज्छौ जोरी लान्छु अब तानेर

यतिका दिन गयो बसेर के भयो काम गर्ने दिन सबै भाइ हिँड हो

0: अहिले तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ 106.3 मेगाहर्जमा जन मनको बोली रेडियो सुसैली।
1: अत्यन्त जरुरी फोन नम्बरहरु सुन्दर हरिच दमकल फोन नम्बर 021-545-6666 मोबाइल 98-41-82-69-72 प्रहरी चौकी विराट चौक 98-520-31-908 इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारी 98-520-90-137 सुकुना हस्पिटल विराट चौक 021-545-786 एम्बुलेन्स 98-520-54-886 रेडियो सुसेनी द्वारा जनहित में जारी।

0: पवित्र जल सुन्दरहरैचा 11 बेलेपुरमा उत्पादित पवित्र जल सधैं पिउने बानी बसालौ। आफ्नो र परिवारको स्वास्थ्यको ख्याल गरौं। सफा स्वच्छ र शुद्ध पिउने पानीका लागि पवित्र जल, पानी जीवनका लागि हो भने सम्झौता किन। सम्पर्क पवित्र जल उद्योग सुन्दरहरैचा 11 बेलेपुर मोरङ, मोबाइल नम्बर 98421484444, 98104553। पवित्र जल भएपछि म त ढुक्क छु। तपाई नि
1: गुणस्तरीय सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता। सुकुना सामुदायिक हस्पिटल प्राली सुन्दर हरेचा 10 मोरङ। अब सुकुना सामुदायिक हस्पिटल प्रालीमा कोशी अस्पतालमा कार्यरत अनुभवी स्त्री रोग तथा प्रसूति विशेषज्ञ डाक्टर विवेचना सिग्देलद्वारा सम्पूर्ण स्त्री रोगको जाँच तथा उपचार सेवा प्रत्येक दिन बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म। हाम्रा सेवाहरू डाक्टर नारायण बस्नेत, एमबीबीएस एमएस, वरिष्ठ सर्जन, पेट रोग विशेषज्ञ। प्रत्येक शनिबार डाक्टर रमेश बस्नेत, एमबीबीएस एमएस, वरिष्ठ हार्ट जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ। प्रत्येक शनिबार डाक्टर हिरालाल सहनी, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ बाल तथा नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ। प्रत्येक शनिबार डाक्टर मनोज गोलाखे, मुटु रोग विशेषज्ञ। प्रत्येक शनिबार डाक्टर नीता मण्डल, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ। प्रत्येक शनिबार डाक्टर राकेश मण्डल, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ फिजिसियन इन्डोक्राइनोलोजिस्ट, ब्लड प्रेसर, सुगर तथा थाइराइड रोग विशेषज्ञ। प्रत्येक शनिबार डाक्टर इक्वाल अहमद, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ युरोसर्जन तथा मूत्र रोग विशेषज्ञ। प्रत्येक शनिबार डाक्टर वरुण देव, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ सर्जन, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ। प्रत्येक शनिबार डाक्टर धीरज खड्का, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ। प्रत्येक शनिबार वरिष्ठ ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डाक्टर सञ्जु घिमिरे। प्रत्येक दिन वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुवेश कुमार शाह। प्रत्येक दिन डाक्टर शिवराज शर्मा, एमबीबीएस एमएस, क्यान्सर सर्जन। प्रत्येक शनिबार डाक्टर सरोज अधिकारी, एमबीबीएस एमडी, मनोचिकित्सा। प्रत्येक महिनाको तेस्रो शुक्रबार डाक्टर अनिश अधिकारी, एमबीबीएस, 24 घण्टा। डाक्टर शिशुपाल मण्डल, एमबीबीएस, 24 घण्टा। डाक्टर विकी शाह, एमबीबीएस, 24 घण्टा। डाक्टर अमोघ उपाध्याय, एमबीबीएस, 24 घण्टा। डाक्टर चन्दन शाह, रेडियोलोजिस्ट। प्रत्येक हप्ताको मंगलबार, बिहिबार र शनिबार दिउँसो 3:30 बजे डाक्टर प्रदीप पाण्डे, सोनोलोजिस्ट। प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म डाक्टर सबिन लुइटेल, रेडियोलोजिस्ट। दैनिक दिउँसो 2 बजेदेखि 5 बजेसम्म सम्पर्क अस्पताल डाइरेक्टर प्रमोद कोइराला, सुकुना सामुदायिक हस्पिटल प्राली सुन्दर हरिचा 10 ब्राड चोक मोरङ, मोबाइल नम्बर 98520848247, फोन नम्बर 021548786।
2: लुगा लगाऊ, गाडी चढ्ने ठाउँसम्म जाऊ, गाडी चढ अस्पताल पुगेर पुर्सी काट, लाइन लाग, कहिले नाम बोलाउँछ अनि बल्ल डाक्टर देखाउन पाइन्छ।
3: के भयो बोलादै, के गुनगुनाइरहेको?
2: होइन, बुढीलाई डाक्टरकोमा लानु पर्ने, कति समय लाग्छ भनेर यसो हिसाब गरेको।
3: हेत्तेरी, अब पनि डाक्टर देखाउन समयको हिसाब गर्नुपर्छ त। अब त सिधै हाम्रो पात्र खोल्नु अनि कुन रोगको विशेषज्ञ डाक्टर देखाउने हो उसलाई अडियो या भिडियो कल गर्नु,
2: यति सजिलै?
3: अनि त अब हाम्रो पात्र एपबाट विशेषज्ञ डाक्टरसँग परामर्श लिन एकदम सजिलो छ। न पैसा लाग्छ धेरै, न समय जान्छ खेरै।

0: এটা ফগন ভাষা গেছে
1: হ্যাঁ কেউ দিন।